0: आठ
1: ओनली टू हैव प्योर फीलिंग विमल भावा वुड अमाउंट टू हैविंग एजुकेशन टू हैव गुड क्वालिटीज वुड कॉन्स्टिट्यूट बीइंग एजुकेटेड हैविंग इक्वालिटी एंड इक्वानिमिटी would amount to being simple. This is the path of truth which Sai tells you.
0: Kattelandu

साई राम डियर लिसनर्स, भगवान हैज स्ट्रेस्ड ऑन मेनी ओकेजन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ ह्यूमन बॉडी. अकॉर्डिंग टू हिम इट इज अ रेयर ब्लेसिंग दैट इज कन्फर्ड अपॉन अस. इन टूडेज डिस्कोर्स बाबा स्पीक्स ऑफ हाउ वी शुड यूज द बॉडी टू रिडीम अवर लाइव्स. लेट अस नाउ लिसन टू अ डिवाइन डिस्कोर्स दैट भगवान बाबा डिलीवर्ड ऑन 17th of May 2000 ड्यूरिंग द समर कोर्स on Indian culture and spirituality in Vrindavan, Bangalore.